दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दे मोहे बचाव, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबाए करतारा, मोरशा निज कर दे करिया, सब बैरन को आ संगरिया।

सापर कृपा दृष्ट कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशन्न, पट गट गए पट पट की जन्न, जब द करख करा कर तारा,

कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुए तेती तुमरा लखाना जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं पुपा अंडज जेरज सेतज किन्नी

पायो शंकर एक ऐठा सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्यम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल काओ एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब काल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे न हरहौ ताके ताप तनक मैं हरहौ रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट छा शब

आयो जिसका सब आधारो जेको खावै जेको पुंचै तिसका हुए उधारो ए वस्त जी नह जाई नेत नेत राख उधारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो।

अर्जन हर गोविंद नाओ सिमराओ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नाओ निध आवै ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी

ने मजा को साध संग दर्शन को है नित नेम जाको सोई दर्शनी सम दर्श त्यानी है शब्द बबेक टेक एक जाके मन बस मान गुर ज्ञान सोई ब्रह्म ज्ञानी है दृष्ट दर्श अर शब्द स्वरत मिल प्रेमी प्रेम उन मन उन मानी है

बड़े प्यारे वचन है। मीत मित्र साजन प्यारे सज्जन जड़े ने सोत पुत्र बंध परिश्तेदार को होत ना साथ। साहब जी कहते ना चो कोई तेरा साथी नहीं है। इसट मीत बंदप इष्ट मीत बंदप सोत भाई। फिर सुनियो इसट मीत बंदप सोत भाई संग बनता रच हसिया जब अंति अवसर आयो बनियो है उन पेखत ही काल ग्रसिया। साहब जी ने गिण दते ने प्यारे मित्र कोल ने इसट मीत बंदप भाई सुत बनता रच उदे नाल हासे खेडे सारे ना करिया जब अंति अवसर आए बनियो है। जदों अंत समा आ गया हसदे हसदे कहिंदे ने जी गल्लां करदा सी हस रिहा सी एकदम ही अटैक हो गया। आखो सतनाम श्री किसने बचाया किसने साह दिता ना ना बिलकुल नहीं है। इसट मीत बंदप सुत भाई संग बनता घरवाली संग बनता रच हसिया हस रिया जब अंति अवसर आए बनियो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोइना रूपा दम पहाड़ी को पहाड़ा मिलिया होर सगल पयो बेराना। साहब जी कहिंदे बहुत कुछ इकट्ठा कीता नर्थ करके एक तुहानू सौखा बचन आ जाना पहाड़ी को बहो पहाड़ा मिलिया होर सगल भयो बहराना। ये पहाड़े का बोल तुहानू पता है ना कई बार आम तो अहीं पंजाब चो ही कित्थों इत्थों ही सारे आप उत्थों ही आए हैं जे जांदे ही रहिंदे आ। कई बार मझ दा कट्टा कट्टी मर जाए ना उहनू कादे ते लाउंदे ने पहाड़े ते उह हरिया जिहा पा के आटा धूड़ दिंदे ने ते जदों धारा कढ लैंदे ने तो चक के पासे कर देंगे होर वो पले की पिया कुछ भी नहीं पिया बस वो पहाड़े ते मिलन वाली बात बन गई है। साहब जी कहते कीता सारा कट्ठा ही है बस मिलिया तेन वो पहाड़े के बराबर है पहाड़ी को पहाड़ा मिलिया होर सगल भयो बेराना। तीर शेर का दिहाड़ी बेमान अवर वस्त तुझ पाहे अमान जड़िया कट्ठिया की तेरे को मानता चुकी बैठा वो तेरिया थोड़ी है तू तो बस आ तिना कसेरा का सवेरे खा लिया दुपहरे खा लिया शामी खा लिया बस इनी कम आद कि कम ही कोई नहीं जे गुरमुखो बाकी तो उन्होंने राखी करने वास्ते बैठा इधरों ना आ जाए तो इधरों ना आ जाए गल तो इनी की होर तो कुछ वध नहीं है। आखो सतनाम श्री तीन सिर का दिहाड़ी बेमान दिहाड़ी ते तेन घर वाले ने रख लिया बस वो राखी करी जा रही। साहब जी अज कृपा करते ने मीत साजन सुत बंध पा को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ। निवाहु निभण वाला नाल निभण वाला बाकी नहीं निभदे वो कौन है राम नाम दीना का प्रभनाथ। दीना के गरीबा का वो मालक है गरीबा की वो रखिया करने वाला है। सवेरे रागी सिंह मेरे ख्याल अज जां कल शब्द पढ़ रहे सी दीनानाथ सुनो अरदास वो गरीबां दी जोदड़ी सुनदा है। चरण कमल बोएथ भए लग सागर तरयो तेह बोएथ नाम है जहाज बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंघी है आठ पैर गुण गाए साधु संगी है। चरण कमल गुरु दे चरण कमल दे प्रतख चरण ने नाम चरण है संसार समुद्र तो तार दंदे ने भेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ सियो नेहे। जिन्हां दे अंदर सच्चा नहीं है जी प्रेम है उन्हां नूं मिल गया मेरा गुरु। पहला ही आरंभ तां इत्थों कीती सी प्रेम सी भीखण शाह दे अंदर तां कलगियां वाला पातशाह मिल गया। जिवें हुण प्रेम होवेगा तिवें गुरु की प्राप्ति होवेगी। साध तेरे की जाचना विसर न सास गिरास तुहाडे करदा संगियां गरीब नवाज जीओ दर ते पहुंच गया है संगत विच अरदास है जाचना मैं मंगता बन के मंगदा की मंगदा है
ਵਿਸਰ ਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਵਿਸਰ ਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ। ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਆਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨਿਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹ ਹਰ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

0: पुन बैकुंठ सधव अजामल को अंत काल में नारायण सुदयाई जा गत को जोगीसर बांशत सो गत छिन में पाई। सतगुरु जी रहमत करन आप जिया की हाजरी गरीब की हाजरी सतगुरु जी आदि गुरु ग्रंथ साहब जी दर ते प्रवान करन जी अमृत बचना की सांझ पाउंदिया गुरु सवारी संगत जी बेअंत भुलां दी माफिया लोक सुखिए बोलो लोक सुखिए बोलो लोक सुखिए पर लोक नानक हर प्रभ हुण पातशाह जी फतेह भी गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का
1: खालसा
0: वाहिगुरु
1: जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जी शाम दे सजे हुए दीवान विच आप संगतां नूं लड़ीवार कथा गुरमत विचारां सरवण करवा रहे सन। सतकार जो ग्यानी गुरमेल सिंह जी दमदमी टकसाल वाले भाई साहब जी होना दा बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे हन। सतकार जोग रागी भाई जसपाल सिंह जी श्री पौंडा साहब वाले अते रागी जत्था उन्हां पासों सरवण करिए जी। सो नाल नाल जो इस वीकेंड ते जो संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले उन्होंने महापुरशां का जन्म दिहाड़ा परिवार वालों मनाया जाना है श्री खंड पाठ साहब की सेवा लई है। सब संगतां ने हाजरी भरनी जी। 30 अगस्त नूं जो निशान साहब दे चोला साहब की सेवा होनी है सब संगतां ने उस दिन भी वध तों वध गुरु घर हाजरियां भरनियां क्योंकि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी उन्होंने संपूर्णता दे विसारे हन। सो सब संगतां ने हाजरी भरनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

आप सारे रब वर्गियां जुड़िया हुई संगतां बैठे हो, बड़ा मन प्रसन्न हुंदा जदों आप जुड़ के गुरु चरणा विच हाजरियां भरदे हो ते कीर्तन सरवन करदे। आओ सारे रल के सतगुर के चरणा दे विच जोदड़ी करिए। गरीब नवाज, तेरे तो बगैर साड़ी थां कोई नहीं। मैं तान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही। जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। ते सच जाने हो, संगत की कीती हुई अरदास कदी सतगुर मोड़दे नहीं, क्योंकि बाणी विच सतगुरां दा वचन है, मोर लाई है, बिरथी कदे न हो गई। जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। ते आओ सारे रल के थोड़े सदके साडा भी भला हो जाए। गुरु की संगत विच जुड़िया हुई रूहां दे विच पता नहीं केड़ा ऐसा परमेसर दा प्यारा बैठा है जिदे सदके साडा सारिया दा भला हो जाना है। सारिया दी झोली गुरु सतगुर पातशाह ने भर देनी है। ते आओ सतगुर नू बेनती करिए। गरीब नवाज, बस साडी तेरे तो बगैर होर थां कोई। एक दुनियावी प्यो नू जदों बच्चा तरला करदा ते प्यो ओदी कोई गल नहीं मोड़दा, सारिया दुनियावी वस्तुआं नाल ओदा भंडार भर दिंदा है। ते गुरु नानक दा घर तो बख्शीशां दा घर है भाई। जिवें भाई नंद लाल जी ने आख्या कलगीधर पातशाह दे महान श्रोमणी कवि अपनी वचन विच लिखदे हन, सचे पातशाह नहीं खाली गया कोई शोहा जो तेरे दामन से, पातशाह तेरे घर तो तेरे दर तो कोई शोह के भी लंघ गया वो भी खाली नहीं गया। मैं भी उसी बंदे का बंदा हूं दामनगीर। गुरु नानक, आओ सारे करो कृपा ते जपो नाले ते सरवण करो।

हाजरी प्रवान करो, सारी संगत आशीष बख्शियो। आप जी के चरणों में साडा तरला है कि गुरु की संगत आशीष बख्शे, अखीरले श्वास तक सतगुरु अपने चरणों च रख के सेवा लेंदे रहन, किसी का मथाज ना करन ते गुरु चरणों नाल जुड़ के जीवन बसर कर सकीए, लोक सुखीए परलोक सुहे।

तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कने

वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए हरि अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया करना दया में ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय

बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद राम सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी धार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी। आप जिया ने कृपा रहमत की है। अमृत वेले तो सोहने तख्तां दे प्रकाश मन के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जिया दा कोटान कोट धनवाद शुकराना है। ऐस वेले शाम दे दीवान दी संपूर्णता परंत आप जिया दे पावन स्वरूप दे सुखासन दी सेवा होई है। सोहिला साहब दी बाणी पढ़ी गई है। बाणी पढ़द्या सेवा करद्या भुल चुक दी खिमा बख्शना आप जिया दे भांडे विच दिहाड़ा सुखा नाल बतीत होया ही रहना। आप दे भांडे विच बतीत होवे। कृपा करो आप जी अपनी सेजां ते विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दे जागने दर्शन बख्श के निहाल करना। सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आम दा नाम चितावे नानक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नौखंड पृथ्वी पिराचर जीवाय माँ उदास तपीसर थीवाय अग्न माय हमत प्राण कनक सभैवर भूमदान निवली कर्म करे बवासन जैन मार्ग संयमत साधन निमख निमकर शरीर कटावे

विकराल, मिथ्या थी असु वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता, मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आप सुपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवा हर के चरण, मिथ्या सरवण पर निंदा सुने, मिथ्या सर हस्त पर दर्भ को हिरे, मिथ्या नेत्र बेखत पे पर त्रेरुपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर बिगार गोदावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे,

गोविंद भजन मन बृत सब काम ज्यो कृपन के रार धाम तन तन ते जन जय घट बस्यो हर नाहु नानक ताके बल बल जाओ रहता वर्ग शबर कमावत मन प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेखना गाहू भीन

कथा अष्टपदी साधक संग मुखुजल होत सा संग मल सगली खोत साधक संग मटे अभिमान साधक संग प्रकट सुखयान साधक संग बुझे ब्रह्म नेरा सा संग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साध की महिमा बरने गौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी साधक संग अगोचर मिला साधक संग सदा पर फुलाय साधक संग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पुंचा सा संग में सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतम हुंता भय सा संग असत मन पावे साधक संग माया ते पिंसा संग नानक प्रभु सुब प्रसन्न सा संग दुश्मन समेत साधु के संग महापनीत

ठाकुर ब्रह्मज्ञानी की मित गौन मखाने ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानी का अंतरा पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता।

कर गर्भांतर उतार रे पास प्रेत मुगत पात्र को उतार रे सर्वरू का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत के तेना पाइय धर्म नानक तिस मिलाय सिलख्या धोर करम।

राष्ट्रपति, कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बान भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तबीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट गभगा बिचारे, कई कोट नवतन नाम ध्यावे नान करते गंतरा भावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगात्मने कोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया सर्व माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभो तित लगना नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व उपाय, कई कोट पात्र बिरख न बजाए, कई कोट पमन पाणी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र से रे शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस्थान सत, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वरण थीवे, कई कोट जके किनर पिसाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच, सबते नेरा सब हूते दूर, नानका अलिप त्रया प्रभूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जूनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट घाले थक पाहे, कई कोट किए तनवंद, कई कोट मारे।

संत के हाथे को रखे ना कोई, संत के दुख धान भ्रष्ट हुए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग निंदक भी तराए, संत के दुखन दे मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए।

मुखना सुख तीर्थराय संग दुखी को नाही ठाउ नानक संभावे तलय मिलाय संगा दुखी अद बीते टूटाए संगा दुखी कते काज ना पहुंचाए संगे दुखी को ध्यान भरमाइए संगा दुखी उजड़ पाइए।

गात निर्मल रीत पीठ संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर भजन करन आगन ने मन संतों का आत्म पति आने पूरा गुर रखे जाका मंत्र अमर दुष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव सिलाए मिलाए जे भाए गुर सतनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पौचत प्राणी अगम अगोचर प्राप निर्बानी निराहार निर्वैर सुदाई ताकि कीमत गिने न पाए अनक भगत बंदन करह चरण कमल हृदय सिमरे सदबलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हर रस पावे जन गोए अमृत पीवे अमृत सो होए उस पुर

प्रकाशाद के संग रच रचनामणि गलता हरियन गवार नानक बलिहारी सलोक साधना चाले बिन भजन बिखिया सगरी चार हर हर नाम कमावना नानक धन सार राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर भाव समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करण कारण सो ब्रह्म सब करण कारण सो प्राभ सम्राथ दृढ़कर गह हो नाम अरवथ ए तन संचोभ भगवान संजना का निर्मल मंत ए गास राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार गुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुखो नित माशे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुक पावी रोग ना जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगे परवान मन प्रबुद्ध वर के राय दैत स्थापित आवा ठाए दागो बिघ्न न लागे गोहे जागे हृदय बसे हर सोए कलताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन से पूर्ण हुए आस भक्त पाया तम बरगास तितकर जाए बसे अविनाशी गहो नानक काटी जम्फासी तद विचार गए जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यों रतन जन्म गावे उदार हर हर सिमन प्राण आधार अनुग भावना शूटन हारे सिमरत सास वेद विचारे अर्घी भगत करो मन लाए मन मंचत नानक फल पाए संगना चाल तेरे तना तुम ख्याल बटा मैं मूर्ख मना सुत मीत उठम अर बन थे कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्तार ते कहो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिंदिए तुझे ना बेगाना नाम मिसार नानक पछताना गुरु की मातु ले याने भगत बनावो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के गर्भिक जाहे आप जब अबरा नाम जब बाबो सुंद गैद रात गद बाबो सार बुद्ध सत्र को नाव सह सुभाए नान गुन गाऊ गुन गाव त्रियुत्र समैल बिन जाए होमे मिख फैल वे चंद बसे सुगनाल सास गरा सर नाम समाहल शाड सियान सगली बना सा संग पावे सज तना हर पूंजी संज करो व्यवहारी हां सुखदर गय जयकार सर्वनंत्र एको देख नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सा राहे सिमर एको मन आहे एक गुन गाव अनंत मंतन जाप एक भगवंत

आप अष्टपदी जब कार्य कशना दृष्टिता पापुंत कहते होता जब तारी अपन सुन समाता बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चेन्ना जाप तब हर सौ कहु किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह कहा किसोबत परमापन खेला भरतीजा नान करने हर न दूजा जब होबत प्रभु केवल तनिता बांध मुगत कहो किसको गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव शगत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत रहित तब कमन ने डर कमन कत डराए आपन जलताव करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपने आसंत है जन्म मरण कहो कहा विनाश जम पूर्ण करता प्रभु सोए तब जिम जम की त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्रगुप्त किसी भूषण रेखा जब नाथ निरंजन अगोचरा गाते तब कौन छुटे कौन बंधन वादे अपने आप आप यह चर्जा नानक अपन रूप आप यह प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पात होता तय बिन मैल कहा हो क्या तोता जय निरंजन निरंगा निर्वाण दय गौन गौ मान गौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीता शाल क्षेत्र लगत गौ की स जय जो स्वरूपी जो संग समावत किसे भूखम त्रपताप करण करावन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जय

आल जाल माया जंजाल में मोह भ्रम व्यापार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की बखियान अपन खेल आव कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक अवगत भगत है।

राष्ट्रपति आप कथे आप सुनने हारा पे का विस्तार जात से पावित सिठ उपाय अपने भाड़े लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किशो आप नु सब जगत परोए जागो प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तदका बेता नानक सकल सिठ का जेता जी चंद्र सब ताके हा दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई ना मारा सो मुआ जिस मनो में सारा है तिस्ता जबर कहा तिस्ता अबर कहा को जाए

आप अला कर दू तत् नहीं किया पे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साज ओत पोत आपन।

गुणगोविंद अमरदरस पियो। चित चित वो नारायण एक एक रूप जागे रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साधु।

दूर कथना कथी न आवे तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगां जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे प्रवाहो।

असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर

चक्र चिहन अर बर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेह कहु कह ना सकत केह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित ओज कहि जय कोट इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजय तिरपहम ही पसुर नर असुर

प्रधान्य केसर बत्र जापे है केसर बत्र थापे है केसर बत्र पहन केसर बत्र मान केसर बत्र इंद्राय केसर बत्र चंद्राय के सर्वंग कलई में के परमंग फही में के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन अल वजू है तो मामल रुजू है

प्यारी साध संग जी साहबां दी रहमत होई है आप संगतां ने श्री आसा की वार दे कीर्तन गुरुद्वारा साहिब फ्री मौन तो सरवण कीते हन। आप संगतां नूं कीर्तन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग रागी भाई जसपाल सिंह जी श्री पौंटा साहिब वाले ते रागी जथा समूह जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण सतगुरु साहिब जी वालों बख्श मुख वाग दी कथा आप संगतां नूं सरवण करवा रहे सन सरवण करवा रहे हैं सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी दमदमी टकसाल वाले उन्होंने पासों बड़े प्यार नाल सरवण करिए जी। सो नाल ही आप संगतां नूं बेनती है कि जो इस वीकेंड ते संत बाबा अजीत सिंह जी साली वाले उन्हां महापुरशां दा जन्म दिहाड़ा मनाउंदिया होया परिवार वालों श्री खंडपा साहिब की सेवा हो रही है। सो परिवार वालों बेनती आप संगतां नूं आप जी ने वध तों वध हाजरियां भरनियां जी। 30 अगस्त नूं जो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी होना दे संपूर्णता दिवस आ रहे हैं उस दिन जिथे विशेष समागम होने हैं नाल जो महापुरशां दीयां बरसियां मनाईयां जाणियां हन नाल नाल निशान साहब दे सेवा चोला साहब की सेवा होनी है। सो आप संगतां ने वध वध गुरु घर हाजरियां भरनियां जी। वाहेगुरु जी का खालसा जी वाहेगुरु जी की फतेह।

हरि हो। कृपा दृष्ट जदो कृपा दृष्टि मेर भरी नजर नाल मेरा गुरु वेखदा है कृपा करदा उते कृपा विशेष हुंदी है। जिहड़े साहिबां दी पावन हजूरी अंदर सज जांदे ने अमृत बाणी सरवण करदे ने कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो। तन मीन जो शरीर निहरि हो मीन जो वेखणा जिस वेले आए हुए सिख ते शरीर ते गुरु की नजर पैंदी है कृपा हुंदी है ते उस वेले ताके ताप तनक तनक थोड़े जे समय दे विच आधियां व्याधियां उपाधियां तन्ने ताप जड़े ने ओ मेरे गरीब निवाज कृपालू दा तार जी खत्म कर दिंदे ने। सतगुरां दी अपार कृपा जे अमृत वेले आदि गुरु ग्रंथ साहब जी ने तख्तां ते प्रकाशमान हो करके खुले दीदारे बख्शे ने अते अमृत वेले सतगुरु जी ने पावन फुरमान मुख वाक हुक्मनामा साहब जी दी बख्शिश कीती है। संगतां बहुत प्यार विच दरगाही फुरमान मुख वाक सरवण करदियां ने फिर जतन कीते जांदे ने भी अज दा जो पावन फुरमान है ओदी विचार भी मिल जावे होर गहराई विच जाया जावे ते जो सतगुरु जी दे अमृत बचन ने उस दे मुताबक

सकै पछाण कर, को सकै न जानी अल्प गुरु आसै मती, किम करै बखानी रल जह इम सगल ही।

गुरदेव जी रलावा वो जाने जे रलावा ता महाराज तुहाडी बाणी अमृत बाणी हर हर तेरी ता मेरे गरीब नवाज कृपालू दा तार गुरु अर्जन देव जी ने सानू बाणी दी दात दे दिती। फिर अमृत बाणी दे के साहबाने बोल कहे ने गुरबाणी गावह भाई ओहो बोलो सफल सदा सुखदाई। गरीब नवाज गुरु अमरदास जी यही तां बोल कहिंदे ने चौह जुग मह अमृत साची बाणी पूरे भाग हर नाम समाणी। पूरिया भागा करके राम दे विच जीव दी भेदता हुंदी है। सिद्ध साधक तरसै सब लोए, सिद्ध लोग साधना करन वाले सब दुनिया दे लोग तरसदे ने। पूरा भाग प्राप्त होए पूरिया भागा करके गुरु खालसा जी

सोहाय। सरस बाण वाहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा। इष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी। कचेली पट मंजरी टोडी कही आलाप कावो दिया गुजरी संग दीपक के थाप। कालंका कुंतल आओ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा। गौरा कान रा कल्याणा इष्ट पुत्र दीपक के जाना।

दूर कथना कथि न आवे तोट कथ कथ कथि कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुकमी हुकम चलाए राहो नानक विगसे वे परवाह साचा साहिब साच नाय पाख्या पाओ अपार आखे मंगह देह दे दात करे दा तार फिर के अगे रखी है जिद से दरबार मोह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाउ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख दुआर नानकी वह जानी आए सब आपे सचे आर थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जन सेव्या तिन पाया मान नानक गावी है गुणी निधान गावी है सुनी है मन रखी है भाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया सुमाई गुरीसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा विन भाणे के नाए करी जे तीसर ठ्यो पाई वेखा विन करमा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होरद सुनी होए नवा खंडा मिच जानिए नाल चले सब कोय चंगा ना उर खाए कह जस कीर्त जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीटकार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करै सुनया सिद्ध पीर सरनाथ सुनया धरतवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईश्वर वर्मा इंद सुनया मुख सलाहन मंद सुनया जुग जुग तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सत संतो ज्ञान सुनया सरका सुनान सुनया पड़ पड़ पावे मान सुनया लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया।

बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जेको खाए के आखन पाए ओ जाने जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे आखे से भे के ई के जिसनु बख्शे सिबत सलाह नानक पात साही पात साहू।

नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिवते दीवड़े आई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साह पात साहिब नानक रह नर जाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करे बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत

नानक गया जापे जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, किते पवन पाणी वै संतर, किते कान महेश, किते ब्रह्मे घाड़त घड़ी है रूप रंग के वेस, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देस, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देस, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेस, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पान रिंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंत नांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद अकोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुते अनूप।

करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार हरण मत वेद उथियार भाव खलागण तप ताओ पांडा भाव अमृत तित टाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत।

जेते अंत पछोताई आए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम गोचरा तिरंत न पाया अंतु न पाया, किने तेरा अपनाप तू जाने। जी जन सब खेल तेरा क्या को आख वखाने, आख है ता वेख है सब तू है। जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा गम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जनता सब तो दे पाए, खवेक परसने आया। लभ लोभ अंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा, तने अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली,

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾ